अंदर जियो सब कुछ जान ला, सब कुछ तेरा बस तेरा कर भला, तेरे घर अनंद बधाई तुझ कर, माण माता ते जापना बजर।

चेत आवन का सदका सर्व सुख होवे। खालसे जी की देख देख फतह, चौकियां चंडे बंगे जुगो जुग अटल रहे। धर्म का जयकार खालसा दी सावे बोलारे। खालसे जी नु नाम दान सिखी दान गुरमत दान बुद्ध विवेक राय तरछा दान। खालसे जी नु श्री हरिमंदर साहिब अमृत सार सरोवर जी दे इशनान। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पाठ दर्शन दीदार मेले बुलारे।

त्रिपवन महीप सुर नर असुर नेत नेत बन तृण कहत त्व सर्व नाम कथ कवन कर्म नाम बरनत सुमत

कहो नानक कृपा पई प्रभ पई सहाई मिल लहु दयाल टह पै द्वारिया रख ले बहु दीन दयाल प्रमत बहु हारिया भगत वशल तेरा बिरद हर पतत उदारिया

मारू मस्त अंग बेवारा, प्रबल चांड को साक उभारा, खौ खटवा पहरानत गाए, अष्टमाल को साक संग लाए, पुन आयो हिंडोला, पंच नार संग अष्ट सोत।

पाल हरिय पाल हरिय छेद हरिय भेद हरिय जंत्र हरिय मंत्र हरि सो तेज हरिय तंत्र हरि अजात हरिय पाद हरिय मित्र हरिय मात हरिय रोग हरिय शोक हरिय भरम हरिय करम हरि अज हरिय भ हरिय भेद हरिय छेद हरिय खंड हरिय भंड हरिय दंड हरिय।

बिंद के सधैयता ही जिकी वटैया दे दबंदरा सदीव पाए न गई फिरत है। अंगना अधीन काम क्रोध में प्रवीण एक ज्ञान के विहीन छिन्न कैस के तरत है। भूत वन चारि चित छौना सब दूता धारी पौन के आहारी सो भुजंग जानियत है। तृण के भजैया धन लोभ के तजैया दे दुकौन के जैया ब्रिक भैया मानियत है। नभ के उड़ैया ताहे पंछ की वडैया देत बगुला विडाल ब्रिक ध्यान ठानियत है। जिते बडैया नित नो जानी पव खानी नाहे असन प्रपंच मन भूल आनियत है। भूम के बसैया ताहे भूचरी गजैया कहे नभ के उड़ैया सोच रैया कह बखानी है। फल के बछैया ताहे बांदरी गजैया कहे आदि सफिरैया दत भूत कह पछानी है। जल के तरैया को गंगे ऋषि कहत जग आग के वछैया सोच गोर सब मानिए। सूरज सिवैया ताहे कौल की बढ़ाई देत चंद्रमा सिवैया को कवि के पहचानी है। नारायण कछ मछ तिंदुआ कहत सब कौल नाप कौल जेह ताल में रहत है। गोपीनाथ गुजर गोपाल सबे देन चारी रिखि के नाम के महंत लहियत है। माधव भवर ओ अटेर को कन्हैया नाम कंस को बधैया जय मधुत कहियत है। मूड रूढ़ पीड़त न गूढ़ता को भेद पावे पूजत न ताहे जाके राखे रहियत है। विश्वपाल जगत का

जैसे एक आग दे कनु का कोट आग उठे न्यारे न्यारे हो के फिर आग में मिलाएंगे। जैसे एक दूर दे अनेक दूर पूरत है दूर के कनु का फिर दूर ही समाएंगे। जैसे एक नद दे तरंग कोट उपजत है पान के तरंग सब पान ही कहाएंगे। तैसे विश्व रूप ते अभूत भूत प्रकट हो ताही ते उपज सब ताही में समाएंगे। केते कछ मछ केते उनको करत भच केते अच वच हो सपज उड़ जाएंगे। के दिन अब बीज अच बच को करेंगे भज के तक प्रतच हो पचाए खाए जाएंगे। जल कहाँ थल कहाँ गगन के गौन कहाँ काल के बनाए सब काल ही चबाएंगे। तेज ज्यों तेज में अतेज जैसे तेज दीन ताही ते उपज सब ताही में समाएंगे। कुकत फिरत कित रोवत मरत कित जल में डुबत कितने आग में जरत है। कित गंग वासी कित मदीना मकानी वासी के तक उदासी के ब्रह्माई फिरत है। करवत सहत कित भूम में गड़त कित सुअ पे जड़त कित दूह को भरत है। ज्ञान में उड़त कित जल में रहत कित ज्ञान के विहीन जग जा रही मरत है। सोध हारे देवता विरोध हारे दानो बंटे बोध हारे बोधक प्रबोध हारे जापसी घास हारे चंदन लगाए हरे जो आचार बूझ हारे बाहन चढ़ाए हरे लापसी गाह हारे गोरन मनाए हरे मड़ी मटली पहारे भीतन लगाए हरे छापसी गाय हारे गंधर्व बजाए हरे किन्नर सब बज हारे पंडित तप

सुखं कहूं औखति रोग के सुख सुखं कहूं देव विद्या कहूं दैत बाने कहूं जछ गंधर्व के नर कहानी कहूं राजसी सात की तामसी हो कहूं जोग विद्या धरे तापसी हो कहूं रोग रहता कहूं जोग जुगतं कहूं भूमि के भुगत मैं ब्रह्म भुगतं कहूं देव कन्या कहूं दानवी हो कहूं जछ विद्या धरे मारवी हो कहूं राजसी हो कहूं राज

जय सतरु मित्र नहीं जन्म जात जय पुत्र भ्रात नहीं मित्र मात जय करम मरम नहीं धर्म ध्यान जय नेह गेह नहीं ब्योत बान जय जात पात नहीं सतरु मित्र जय नेह गेह नहीं।

जय जात न पात न मात पितंग जय रचयं छत्री छत्र शितंग जय राग न रेख न रोग भणंग जय द्वैख न दाख न दोख गणंग जय अंड ते ब्रह्मंड रचयो तस चार करी नवखंड सचयो रज तामस तेज तेज कियो अनुभव बध आप प्रचंड लियो श्रेय सिंध रू बिंद नगेंद नगंग श्रेय जज गंधर्व फणिंद भुजंग रज देव देव भेव नरंग नरपाल नृपाल कराल त्रिगंग कई कीट पतंग भुजंग नरंग रज अंडज से तज उद भुजंग किए देव देव सराद पितंग अनखंड प्रताप प्रचंड गतंग प्रभ जात न पात न प्रभ जात न पात न ज्योत जुतंग जय तात न मात न भ्रात सुतंग जय रोग न शोक न भोग भुअंग जय जंप है किन्नर जछ जुअंग नर नारण पुंसक जाह किए गण किन्नर जछ भुजंग।

रंगनरे खरुकं जे सोगन भोगन जोग जुगं भुवंजन गंजन आदि सिरंग जे बंदत देव देव नरंग गण किन्नर जाचे बुजंगर जे मण माणक मोती लाल सुचे अनभंज प्रभान गंज प्रतंग जे पार न पावत पूरम तंग अनखंड स्वरूप दंड प्रभा जय जंपत वेद पुराण सभा जय वेद कते अनंत कहे जय भूत अभूत न भेद लह जय वेद पुराण कतेव जपै सुध सिंध दो मुख ताप तपै कई कल्पन लो तब ताप करै नहीं नैग कृपा निध पान परै जय फोकड़ धर्म सभा तज है एक चित कृपा निध को जप है तेउ या भव सागर को तर है भव भूल न देह पुनर्धर है।

समस्त सिद्ध वृद्ध दा सदैव सर्वसात है। अनाथ नाथ नाथ है, अभंज भंज है सदा, गंज गंज गंज है सदैव सिद्ध वृद्ध दा। अनूप रूप स्वरूप है, अछिज तेज मानी है, सदैव सिद्ध शुद्ध दा प्रताप पुत्र जानी है। न राग रंग रूप है, न रोग राग रेख है, अधोग दा गदक है, अभूत ब्रह्म भेक है। न दात मात जात है, न पाद जिहन वर्ण है, अदेग सेग भेक है, सदैव विश्व वर्ण है। विश्वंबर विश्वनाथ है, विशेक विश्व भरण है, जिमे जमान के बिके सदैव करम भरम है। अद्वेक है, अभेक है, अलेख नाथ जानिए, सदैव सर्व ठौर में।

न जाच है न गंधर्व है ना नर है ना नार है ना चोर है ना साव है ना साह को कुमार है न नेह है न गेह न देह को बनाव है न छल है न छिद्र है।

न देव है न दैत है न नरको स्वरूप है न छल है न छिद्र के विभूत है न काम है न क्रोध है न लोभ है न मोह है न द्वैख है न भेख है न दुई है न द्रोह है न काल है न बाल है सदैव दयाल रूप है अगंज है अवंज है अभ्रम है अभूत है अछेद छेद है सदा गंज गंज गंज है अभूत भेक है बलि अरूप राग रंग है न द्वैख है न भेख है न काम क्रोध गर्म है न जात है न पात है न चित्त।

करंत सेव है सदा सिदस्पते तपस्पते वनस्पति जपस सदा अगस्त आद जे बड़े तपस्त पे पिसेखी है बेअंत बेअंत बेअंत को करंत पाठ पेखी है अगाध आद देव की अनाद बात मानिए न जात बात मंत्र मित्र सत्र सनेह जानिए सदैव सर्वलोक के

रूप रागना रेख रंगना जन्म मरण विहीन आदनाथ अगात वृक्षो धर्म करम प्रवीण जंत्र मंत्र न तंत्र जाको आद पुरग अपार हस्त कीट विखै पद सब ठौर मैं निर्धार जात पात न तात जाको मंत्र मात न मित्र सर्व ठौर विखै रमे।

जंत्र मंत्र न आवई कर तंत्र मंत्र न कीन सर्प ठोर रहयो बिराज धीराज राज प्रवीन जच गंधर्व देवदानो न ब्रह्म क्षत्रिय न माहे वैष्णव के बिखे बिराज सूत्र भी वह नाहे गुड़ गौड न भील भी कर ब्रह्म से एक स्वरूप रात दिवस न मध और न भूम आकाश अनूप जात जन्म न काल कर्म न धर्म कर्म विहीन तीर्थ यात्रण देव पूजा गोर के न अधीन सर्व सबत पतार के दर जानिए जह जोत शेष नाम सहंस फन नहनेत पूर्ण होत सोत सोत हटे सभा सुर विरोध दानव सरब गाय गाय हटे गंधर्व कवाए किन्नर गरब पड़त पड़त थके महाकब गढ़त गाढ़ अनंत हार हार कहे सबो

सत द्वापर तृतीया कल युग चतुर काल प्रधान ध्याय ध्याय थके महामुन गाय गंधर्व पार हार हार थके सबै नहीं पाइये तह पार नारद आदिक वेद व्यासक मुन महान अनंत ध्याय ध्याय थके सबै कर कूट कष्ट दुरंत गाय गाय थके गंधर्व नाच पचर पार सोत सोत थके महासुर पायु नह पार त्वा प्रसाद दोहरा एक समय श्री आत्मा उचर्यो मत्स्यो बैन सब प्रताप जगदीश को कहो सकल विद तैन दोहरा को आत्मा स्वरूप है कहाँ श्रेष्ठ को विचार कौन धर्म को कर्म है कहो सकल विस्तार दोहरा कह जीतब कह मरण है कवन सुरक कह नरक को सुगुणा को मूढ़ता कहाँ

तेज बरंग लंगुड़िया बांधे आयुध बांधे सैन बिमर्दन काल सुर अष्टायद चमके भूखण दमके अदित झमके फुंक फनंग जय जय हो सी मैं खासुर मर्दन राम गबर्दन दैद जिनंग चंडा सुर चंडन मुंड विमुंडन खंड अखंडन कोन खिते दामनी दमंकन तुझा परंकन फणी फंकारन जोध जिते सरदार विवर खंड दुष्ट प्रकर खंड पुष्ट प्रहार खंड दुष्ट मथे जय जय हो सी मैं खासुर मर्दन भूमा का सलूर दधे दामनी प्रहासन सुषम निवासन श्रेष्ठ प्रकाशन गूढ़ गते।

खासुर मर्दन भूमा काश पताल जलन चाचर चमकारं चिच्छुर हारण धूम धूम कारण द्रप मथे दाढ़ विप्रदंते जोग जयंते मरुज मथंते गोड़ कथे करम प्रणासन चंद प्रकाशन सूर्य प्रतेजन अष्ट भुजे जय जय हो सी मा खासुर मर्दन भरम विनाशन धर्म धुजे घुंगुरु कमंकण सदृज मंकण फणियर भुंकारण धर्म धुजे अष्टाट प्रहासन श्रेष्ठ निवासन दुष्ट प्रणासन चक्र गते केसरी प्रवाहे सुत सन्ना हे अगमथा हे एक वृते जय जय हो सी मा खासुर मर्दन आद कुमार आकाद वृते सुर नर मुन बंदन दुष्ट निकंदन भ्रष्ट

सुध दा समर्पण तर्क वितर्कण तपत प्रतापण जपत जीवे जय जय हो श्री सहस्त्र प्रकरखण आध नीलागाध भे चंचला चखंगी अलग भुजंगी तुंद तुरंगण तिछ सरे कर कसा कुठारे नरक निवारे अधम उधारे तूर भुजे दामनी दमंके के हर लंके आद अतंके क्रूर कथे जय जय उसी रक्ता सुर खंडन सुंभ चक्रत निसुंभ मथे बारज बिलोचन प्रतन विमोचन सोच विसोचन कौज कसे दामनी प्रहासे सुख सरणासे सुम्र

वर्धं घंट का बिराजे रुंझुन बाजे ब्रह्म बाजे सुनत सुरंगो केल सुन लाजे केल बिग बाजे सुगोप राजे माध उरंग दुर्जन दल दज मंथन रिझ सब न भज रूरण जय जय हो सी मासुर मर्दन चंड चक्रदन आद गुरंग चाचरी प्रचोदन दुष्ट विरोधन रोष रो

दुख दुख प्रवचन सेवक रक्षण संत प्रदक्षण शुद्ध सरे सारंग सन्ना है दुष्ट वृदा है अर्धलगा है दुख हरे गंजन गुमान्य अतुल प्रवान्य संत।

रक्तासुर मर्दन चंड चक्र दंदान वर्धन बिड़ाल बदे सरधार विबरखन दुर्जन धरखन अतुल अमरखन धरम धुजे धूमराज विधुन संश्रोण दचुन संसुम बन पात निशुम मथे जय जय हो सी मखासुर मर्दन आद अनिल अगाध कथे।

आनंद तहु कहो जथा मत त्रैण तंत। करता करीम कादर कृपाल अद्वय भूतन भय दयाल दाता दुरंत दुख दोख रहत जेह नेत नेत सब वेद कहत। कई ऊच नीच की नो बनाओ सब वार पार जाको प्रभाव सब जीव जंत जानंत जाहे मन मूड क्यों न सेवंत ताहे। कई मूड पत्र पूजा करंत कई सिद्ध साध सूरत सिवंत कई पलट सूरत सिजदा कराए प्रभ एक रूप द्वै कै लखाए। अंशिज तेज अनभर प्रकाश दाता दुरंत हत वै ना सब रोग शोक तेरे।

सतर मित्र दुवे कसार अच्छा स्वरूप चल पार जानी न जाय जय रूप रेख कहे बास दास कहे कौन भे कहे नाम तास है कवन जात जे सतर मित्र नहीं पुत्र प्रात। करुणा निधान कारण स्वरूप जेह चक्र चिन्ह नहीं रंग रूप।

कहा कहे तो सौ सौ पेट ही के बट बीज बचावे। जाच भुजंग सो दानव देवा वेव तुम्हें सब ही कर दिया वे भूमा काज पताल सातल जाच भुजंग सब सुनया वे पाय सके नहीं पार प्रभाओं को नेत ही नेत भेद बतावे खोज थके सब ही खुजिया सुर हार परे हर हाथ न आवे। नारद से चतुरानंद से रुमनारिक से सब हूँ मिल गायो वेद गते बना भेद लखे सब हार परे हर हाथ न आयो। पाय सके नहीं पार उमापद सिद्ध सनात सनंतन ध्यायो ध्यान धरो तह को मन में जह को अमितोज सब जग जायो। वेद पुराण कतेव कुरान भेद निर्पाण सब बचहारे वेद न पाय सके अन भेद वो खेदत है अनछेद पुकारे। राग न रूप न रेख न रंग न साक न शोक न संग तिहारे आद नाद अगाध बेगद वेख जप्यो तिन ही गुलतारे। तीरथ कोट किए स्नान दिए बहुतान महाव्रत धारे देश फिरो कर वेश तपोधन केश धरे न मिले हर प्यारे। आसन कोट करे अष्टांग धरे बहुन्यास करे मुख कारे दीन दयाल काल भजे बिन अंत को अंत के धाम सिधारे। त्वा प्रसाद कबित अत्र के चलैया छित छत्र के धरैया छत्र धार्यो के छलैया महासत्रन के साल हैं। दान के देवैया महामान के बढ़ैया वसान के देवैया है कटैया जय मजाल हैं। जोध के जतैया विरुद्ध

हिंगुला हिमाल जावे गोर कर तिज गुण गावे तेरे नाम है जोग जोग साथ पौन साधना किते के बांधे आरब के आर भी आराध तेरे नाम है फरा के फिरंगी माने कंधारी कुरे सी जाने पच्छम के पच्छमी पछान निज काम है मरहटा मंगेल तेरी मान सो तपस्या करे दृढ़ वै तिलंगी पहचाने धर्म धाम है बंग के बंगाली फिर हंग के फिरंगा वाली दिल्ली के दिल वाली तेरी आज्ञा में चलत है रोह के रोहेले माग देश के मंगेले वीर बंग से बुंदेले बाब पुंज को मलत है गोखा गुन गावे चिन मचीन के शीस न्यावे देवते थे आए दुख देह के दलत है जिन्हें तो हे जायो तिन्हें पूर्ण प्रताप पायो सर्व धन धाम फल फूल से फलत है देव देव दान को सुरेश दानवान को महेश गंग धान को अभेश कहियत है रंग में रंगीन राग रूप में प्रवीण और काहू पे न दीन साधा दीन कहियत है पाई न पार तेज पुंज में अपार सर्व विद्या के उदार है अपार कहियत है हाथी की पुकार पल पाछे।

नियमन करिंदा एक तेज को प्रकाशी है। काल हूं के काल है के शत्रुन के साल है के मित्रन को पोकत है के वृद्धता की बासी है। जो को हूं को जंत्र है के तेज हूं को तंत्र है के मोहनी को मंत्र है के पूर्ण प्रकाशी है। रूप को निवास है।

मान को दिवैया है, जमजाल को कटैया है, के कामना को कर है, तेज को प्रचंड है, अखंडन को खंड है, मही बन को मंड है, के स्त्री है न नर है, विश्व को वरण है, के आपदा को हरण है, के सुख को करण है, के तेज को प्रकाश है, पाई है न पार पार अवार हमको पार, जग की जत विचार सो विचार को निवास है, हिंगुला हिमालय गावे बसी हलप विध्यावे, पूर्वी न बार पावे सत्य नस है, देवन को देव महादेव हूँ के देव है, निरंजन अभिनाथ द्वया विनाशी है, अंजन विहीन है, निरंजन प्रवीण है, के सेवक अधीन है, कटैया जम जाल के, देवन के देव महादेव हूँ के देवनाथ, भूम के भुजैया है मोहय्या महाबाल के, राजन के राजा महासाज हूँ के साजा महाजोग हूँ के जोग है, धरैया ध्रुम छाल के, कामना के कार है, के बुद्धता को हर है, के सिद्धता के साथी है, के काल है कुचाल के, छीर कैसी छीरावत छाज कैसी छतरा नेर, छपा कर कैसी छप काल इंद्र के गोल के, हंसनी सी सिहारो मही रसी हो सेना बाद, गंगा कैसी धार चली सातो सिंध रूल के, पारसी पलाऊ कढ़ रूपा कैसी रामपुर, सोरसी सुरंगाबाद निके रही झूल के, चंपासी चंदेरी कोट चांदनी सी चांदागढ़, कीरत तिहारी रही मालती सी फूल के, फटक सी कैलाश कमाऊ गढ़ कांसीपुर, सीसासी सुरंगाबाद निके सोहियत है, हिमासी हिमालय हर हार सी हलब्बा नेर, हंस कैसी हाजीपुर देखे मोहियत है, चंदन सी चंपावती चंद्रमा सी चंद्रगीर, चांदनी सी चांदागढ़ जोन जोहियत है, गंगा सम गंग धार बकान सी बिलंदवाद, कीरत तिहारी की उजियारी सोहियत है, फरासी फिरंगी फरासी के दुरंगी, मकरान के वृदंगी तेरे गीत गाइयत है, भकरी गंधारी गोर कखरी गर्दे जचारी, पौन के आहारी तेरो नाम ध्यायत है, पूरब पलाऊ काम रूप कमाओ सर्व ठौर में विराज, जहां जहां जाइयत है, पूर्ण प्रताप चंद्र मंत्र ते अतापिना।

0: वाहेगुरु का खालसा वाहेगुरु की फतेह।
1: वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। आसा महला पहला सुन वड्डा आख सब कोए के वड़ वड्डा डीठा होए कीमत पाए न कहा जाए कहने वाले तेरे रहे समाए वड़े मेरे साहेबा गहर गंभीरा गुणी गहीरा कोए न जाने तेरा केता के वड़ चीरा रहाओ सब सुरती मिल सुरत कमाई सब कीमत मिल कीमत पाई ज्ञानी ध्यानी गुर गुरहाई कहन न जाई तेरी तिल वड्याई सब सत सब तप सब चंगियाईया सिद्धां पुरखां कियां वड्याईया तुद विण सिद्धि कनै न पाईया करम मिलै नाही ठाकर हाईया आखण वाला क्या विचारा सिफती भरे तेरे भंडारा जिस तों देहे तसै क्या चारा नानक सच सवारन हारा।

चली यह दुख सो क्यों विसरै मेरी माए साचा साहिब साचै नाए रहाव साचे नाम की तिल वढ़ियाई आख थके कीमत नहीं पाई जे सब मिलकै

इच्छा तव चरणन मन रहे हमारा अपना जान करो प्रतपारा हमरे दुष्ट सभय तुम घावो आप हाथ दे मोहे बचावो सुखी बसै मोरो परवारा सेवक सिख सभय कर तारा मोर अच्छा निज कर दय करिये सब बैरन को आज संगरिये पूर्ण होए हमारी आशा तोर भजन की रहे प्यासा तुम्हें छाड़ कोई अवर ना ध्याऊं जो बर चाऊं सो तुम ते पाऊं सेवक सिख हमारी तारी है चुन चुन सत्र हमारे मारी है आप हाथ दे मुझे उबरिये मरण काल का त्रास नवरिये ऊजो सदा हमारे पच्छा श्री असदुज जू करियो रक्षा राख लिहो मोह राखन हारे साहिब संत सहाय प्यारे दीन बंद दुष्टन के हंता तुम हो पुरी चतर दस कंता काल पाए ब्रह्मा पप धरा काल पाए शिव जू अवतरा काल पाए कर विषण प्रगासा।

कियो। घट घट के अंतर की जानत, भले बुरे की पीर पछानत। चींटी ते कुंचर यस्थूला, सब पर कृपा दृष्ट कर फूला। संतन दुख पाए ते दुखी, सुख पाए साधन के सुखी। एक एक की पीर पछान, घट घट के पट पट की जान।

सिमट भयो शंकर कैठा सगरी सृष्ट दिखाए अचंभव आद जुगाद स्वरूप स्वयंभव अब रक्षा मेरी तुम करो सिख उबार असिख संघरो दुष्ट जुते उठवत उत्पाता सकल मलेच करो ऋण घाता जे इस दुजताओ शरणी परे तिनके दुष्ट दुख तुहे मरे पुरख जवन पग परे तिहारे तिनके तुम संकट सब टारे जो कल को एक बार धिए हैं ताके काल निकट नह आए हैं रक्षा होए ताहीं सब काला दुष्ट अरिष्ट

राख मोहे मन क्रम बचन बिचार चौपई मन अग्न सह प्रथम मनाऊ किशन बिशन कबहु नह द्याऊ कान सुन पहचान नतन सो लवलागी मोरी पग इंस।

मैं कथा संक्षेप ते सब हूँ कहत सुना कब बाच दोहरा ठाड भयो मैं जोर कर बचन कहा सुर न्याय।

विस्माद रूप विस्माद रंग विस्माद नागे फिरह जंत विस्माद पौन विस्माद पानी विस्माद अग्नि खेडे विडान विस्माद धरती विस्माद खानी विस्माद साध लगे है पराण विस्माद संजोग विस्माद विजोग विस्माद।

भैव चिन्ह फिरा सिर भार भैव च राजा धर्म दुआर भैव सूरज भैव चंद कहो करोड़ी चलत न अंत भैव सिद्ध बुद्ध सुरनाथ भैव च आडाने आकाश भैव जोध महाबल सूर भैव

सो कुत्ता चिंता करे जिनी पाया जग तिस जुहारी स्वस्थ तिस तिस दी बाणी पग नानक सच्चे नाम बिन क्या टिका।